आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

बागों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयले, महके सारा ये समा हवाएं महकी सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए।

0: तेजा
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: पायले झुनझुन झुनझुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म विरासत का ये गीत, इसमें आवाज दी है कुमार सानू और उनके साथ के एस चित्रा ने।

पायलें झुनमुन झुनमुन झांझरें रुन झुन रुन झुन कितना मधुर है ये मेरी।

Squeeze.

0: चूमे सुन सुन प्यार में खोए है ये मन
1: पायले झुनमुन झुनमुन झांझरे रुन झुन रुन झुन कितना मधुर है ये मी

पायले झुनझुन झुनझुन झांझरे रुन झुन रुन झुन कितना मधुर है ये मीना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत या आकाशवाणी का गोल्डन सिटी चैनल है और आपने ट्यून किया है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओं, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राजेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार, स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जुड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
0: ऐतिहासिक और अनुवांशिक

0: अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया। प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहाँ से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुँचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुँचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेल कूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

बेटियां हैं सोने के तारों से पीली, सोने के गहनों में पीली।

पक रही फसल लद रहे चना से बूट, पक रही फसल लद रहे चना से बूट, पड़ी है हरी मटर। तीमन को साग और पोहों को हरा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

फ्लैश कार्ड्स और पोस्टर्स का है अनोखा मेल, फ्लैश कार्ड्स और पोस्टर्स का है अनोखा मेल, टिम टिम तारा जादुई पिटारा।

0: रंग बिरंगी पुस्तकें हैं बड़ी मजेदार, रंग बिरंगी पुस्तकें हैं बड़ी मजेदार,
1: बड़ी मजेदार।
0: कठपुतलियों से होगा मनोरंजन ढेर सारा, कठपुतलियों से होगा मनोरंजन ढेर सारा। टिम टिम तारा जादुई पिटारा,
1: टिम टिम तारा जादुई पिटारा, जादुई पिटारा।
2: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यही पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का, जैसलमेर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम जयपुर के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।

0: है श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और देश लगातार प्रगति कर रहा है। श्री अठावले ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी बढ़ी है और मेक इन इंडिया अभियान ने तेज गति पकड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय भी समाज कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। जनगणना 2027 पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग की जानकारी मिलेगी, जिससे केंद्र सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में और मदद होगी।
2: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, एससी एसटी को, ओबीसी को फायदा मिला है और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
1: केंद्र सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश एक अस्थायी उपाय है, जिससे इस संकट के समय में जमाखोरी को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से विशेष प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के विषय पर आधारित इन प्रदर्शनियों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जिला सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाड़मेर में ये प्रदर्शनी भगवान महावीर टाउन हॉल में और 12 के जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई है। आमजन के अवलोकन के लिए ये प्रदर्शनी 14 जून तक खुली रहेगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी के दौरान बीमार पड़ने के बाद राणा का हाल ही में चिकित्सा उपचार किया गया था। उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें स्टंट डाला गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके असर से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बरसात हुई, जिससे श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 52 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अब भी जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मूमल।

0: कोमल सुनने वाली सभी प्यारी सखियों को आपकी रेडियो सखी सुधा पुरोहित और
1: प्रीति गोयल का प्यार भरा नमस्कार।
0: तो सखियों, एक बार फिर हाजिर है हम सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मोमल के साथ में। कई चर्चाएं, कई बातें, कुछ कही कुछ अनकही सी, ऐसी बातें जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। कभी हम हमारी बात करते हैं तो कभी हम परिवार की बात करते हैं, कभी बच्चों की बात करते हैं, कभी परिवार के बुजुर्गों की बात करते हैं। प्रीति, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, आपके मार्फत अपनी सखियों से कहना चाहूँगी कि हम कोई भी, हम महिलाएं कहीं पर भी बैठकर कोई भी बात करें, कोई भी चर्चा करें, तो वो इतनी सार्थक होनी चाहिए कि हमें उससे कुछ न कुछ सीखने को मिले। तो आज प्रीति, आप अपने पिटारे में हमारी प्यारी सखियों के लिए क्या क्या लेकर आई हैं?
1: सुधा, आज सबसे जरूरी चीज़ है कि बच्चे, ये सबसे बड़ी भगवान की देन होती है, लेकिन उन्हें कैसे अवेयर ना है, कैसे सफेर ना है, ये एक माँ से बेटर कोई नहीं जानता है। माँ तो है ही है, लेकिन इसके पीछे पूरे परिवार का भी सहयोग होना चाहिए। बचपन जो होता है ना, वो सबसे अच्छा समय होता है, उसको दबाव में उनका बचपन खोना नहीं चाहिए। बचपन ऐसी चीज़ है, बच्चे बिना पंख के उड़ना चाहते हैं, और कई बार पेरेंट्स दबाव में उनके उस पंख को काट देते हैं। मतलब दबाव या पंख का मतलब है कि हम बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं ना कि वो खेलना कूदना सब भूल जाते हैं, जो उनका सही जीवन है। जीवन में सारे काम होते हैं, लेकिन एक समय आने पर हम बच्चों से उम्मीद करते हैं समय से पहले वो सारे काम कर ले। या मैंने कई बार ऐसा देखा सुधा, जो पेरेंट्स बचपन में खुद नहीं कर पाए ना, वो बच्चों से उम्मीद करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो हम नहीं बन पाए वो बच्चे कर पाए, लेकिन फिर भी एक मेरा ये कहना है कि पहले हमें एक बार बच्चों से पूछ लेना चाहिए वो क्या करना चाहते हैं। हम अपना दबाव उन पर इतना डाल देते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चे खेलना कूदना बोलना हंसना सब भूल जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, मुझे पढ़ना है, बस मुझे पढ़ना है। पढ़ने का एक समय होता है, एक माना जाता है कि वो समय अभी है, फिर नहीं आता। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, हम किसी और राह पे उन्हें डाल देते हैं, और लास्ट में रिजल्ट ये होता है कि बच्चे नाकाम हो जाते हैं, और उसके लिए फिर हम बच्चों को ही दोष मानते हैं। तो शायद ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है।
0: सही कहा प्रीति तुमने, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी उम्मीदें रखते हैं अपने बच्चों से। प्रीति, बच्चे तो मासूम है, ये कह सकते हैं कि उनकी मासूमियत, उनका बचपन, आज जो मैं कल्चर देख रही हूँ उसमें छीना जा रहा है। बच्चों से बचपन उनका छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बचपन अलग था, आज जो समय है वो अलग है।

0: टेक्नोलॉजी का युग है, आज इंटरनेट का युग है, और उसमें पहले से ही बच्चे इतने काम के बोझ से, जो स्कूलों में जो होमवर्क मिलता है उनसे इतने इतने असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं कि बच्चे मुझे से कोई दब से गए हैं। प्रीति, मैं सही कह रही हूँ कि मैं छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस उम्र में 2-2.5 साल के बच्चे और उनको स्कूलों में भेजा जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि उनका बचपन छीन रहे हैं, उनकी मासूमियत जो है वो उनसे छीनी जा रही है। और जो अभी आपने कहा कि उनके पंख काटे जा रहे हैं, ये सही है सखियों, कि बच्चों के बचपन को मत छीनिए। बच्चों का बचपन किसी भी समाज की सबसे अनमोल पूंजी होता है। उन्हें किताबों, ट्यूशन या स्क्रीन के बोझ तले दबाने के बजाय खेलने, कूदने, गलतियां करने और कल्पना की उड़ान भरने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और पता है प्रीति, बचपन छीनने के मुख्य कारण क्या है? कि वो बच्चों के मासूम बचपन और उनके मानसिक विकास में आज कई रुकावटें आ रही है, और मैं सबसे बड़ी रुकावट मानती हूँ अत्यधिक पढ़ाई का बोझ, स्कूल के बाद ट्यूशन और एक्स्ट्रा जो करिकुलर क्लासेस हैं उनका भारी दबाव बच्चों से उनका खाली समय जो है वो छीन लेता है। मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स की भी बच्चों को लत लगी हुई है, ये बच्चों को वास्तविक दुनिया और दोस्तों से दूर कर रही है। और एक बात और, अगर हम देखें तो भारत में बाल श्रम बहुत ज़्यादा है, गरीबी है, परिवार में बच्चे ज़्यादा होते हैं, और ऐसे गरीब परिवारों के जो माता पिता है ना प्रीति, वो ये सोचते हैं कि अगर छोटे बच्चों को भी हम काम पर लगा देंगे तो ये 2 पैसे आएंगे और उससे हमारा घर चल जाएगा। तो बाल श्रम तो मैं एक बच्चों के जीवन पर अभिशाप मानती हूँ। बच्चों के हाथ में जहाँ कहते हैं ना कि किताब और कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, उस समय उनके हाथ में जिम्मेदारियों का बोझ पकड़ा दिया जाता है, और बच्चे अपना बचपन जीना या कहते हैं उछलना कूदना खुशी मौज मस्ती वो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं।
1: बिल्कुल सुधा, ये बिल्कुल सही कि आज आज देख भी रहे हैं, बाल श्रम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम इसके लिए ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमें अगर कोई लग रहा है ना कि कहीं छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं या कुछ, तो हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और इसकी FIR दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि ये हम जब तक नहीं रोकेंगे इसका पड़ाव, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आगे बढ़ें और पहल करें। बाल श्रम करवाना बहुत बड़ी गलती है, जहाँ उन बच्चों को खेलने कूद, उनके पेरेंट्स नहीं समझते, लेकिन अगर हम समझते हैं तो हमें तो पेरेंट्स को भी होता है ना, कि अगर वो ये है कि आज ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि गाँव में थोड़ी ज़्यादा है, या फिर यूँ कह सकते हैं जहाँ पे गरीबी सीमा से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर, या लंबे परिवार कमाने वाले एक है, तो ये सोचते हैं कि अगर ये बच्चा 14 साल का 13 साल का हो गया है, बस इसको काम पे लगा दो, पढ़ाई का क्या करना है बाद में, भी तो इसको मजदूरी करनी। ये ऐसा वो क्यों सोचते हैं? अगर उसके फादर या दादा कोई भी मजदूरी करते तो उनको लगता है हमें भी अपने बच्चे को इसी लाइन में डालना है, पर ये गलत है। आजकल तो हम देख रहे हैं ना सुधा, कि स्कूलों में पढ़ाई भी मुफ्त है, किताबें मुफ्त है, खाना मुफ्त है, इतनी सारी चीजें मुफ्त दी जाती है, तो फिर पढ़ाई से क्या डरना? कुछ पैसा नहीं लगना है, बस आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। तो ये हमें उन माता पिता को समझाना है कि कमाने की तो उम्र पड़ी है, लेकिन पढ़ाई की उम्र नहीं पड़ी, वो अभी होती है। उसमें आप बल शर्म मत कराइए बच्चों को, उनको पढ़ने दीजिए, क्योंकि उनका बचपन मत दबाइए। कई बार हम देख रहे हैं बच्चे छोटे छोटे ठेलों पे काम करते हैं, और जब दूसरे लोग आते हैं ना वहाँ पे खाते पीते, बच्चे ऐसे मुंह कर देखते हैं जैसे कि ये भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये भी खाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां उन्हें वो नहीं करने देती हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर एक निर्णय लेना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए।
0: एकदम सही कहा प्रीति, हमें बच्चों के बचपन को बचाना होगा। बच्चों को एक तनाव मुक्त और खुशनुमा माहौल देने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे बच्चों की ये दिनचर्या में आउटडोर जो खेल है और दोस्तों के साथ बिताए गए समय को जरूरी बनाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, तो उन पर अपनी उम्मीदों का भारी दबाव हमें नहीं डालना चाहिए। मैंने देखा है कि कई ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों की तुलना करते हैं कि उनका बच्चा ऐसा है, वो तो ये करता है, तेरे से ये भी नहीं होता। इससे बच्चे ना डिप्रेशन में आ जाते हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि छोटे बच्चे कैसे डिप्रेशन में आते हैं, लेकिन उसके बाद में मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि छोटे बच्चे भी टेंशन लेते हैं, उनको भी जब तुलना की जाती है या इरिटेट किया जाता है तो वो काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुमसुम से हो जाते हैं। तो बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। और प्रीति, तुलना करना तो बहुत गलत है, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि माता पिता जो है वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में अपनी एक जगह बनाने के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा

बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट किसी बड़ी स्कूल में जाएगा और बहुत अच्छे सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ते हैं कि रिजल्ट अगर अच्छा रहेगा तो हम भी सोसाइटी में, सोशल जो हमारा समाज है उसमें हम भी बता सकते हैं कि नहीं भाई हम किस तरह के पेरेंट्स हैं। पढ़ाई मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है लेकिन एक हद तक, क्योंकि बच्चे में हम तो शुरू से देखते हैं कि सर्वगुण संपन्न होना सबसे बड़ा गुण माना गया है। बच्चे का चौतरफा विकास होना चाहिए और अगर उसे सर्वगुण संपन्न बनाना है तो उसे हर एक्टिविटी में, हर माहौल में ढलने का मौका मिलना चाहिए। तो प्रीति, हम चर्चा तो आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि आज हम अपने पिटारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आए हैं, लेकिन बातों से तो प्रीति आपका पेट भरना है, ना मेरा ना हमारी सखियों का। तो क्यों ना हम अपनी सखियों को लेकर चले संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा बेहद खूबसूरत नगमा।

जाला धरती पे आए चमक चांदनी होठों पे तेरे जीतों की माला सांसों में तेरी खुली रागिनी बैंड बजाऊंगा झूमके गाऊंगा ब्याह तेरा होगा बारात सजेगी सजनी सजन होंगे।

0: बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी अनाड़ी। गीत को आवाज दी थी उदित नारायण ने। अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
6: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: टन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तो प्रीति, हम अपनी सखियों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है और यही एकात्म भाव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास की। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का प्रसिद्ध राजनीतिक नारा है और इसे उनकी नेतृत्व वाली सरकार द्वारा समावेशी विकास और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के अपने दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए पेश किया गया था। बाद में इस नारे को विस्तारित करके सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कर दिया गया। इस नारे से हमें ये पता चलता है कि सरकार का विजन क्या है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो इतना तो हम भी जानते हैं कि किसी एक के विकास से कुछ नहीं होना है, हमें साझा विकास पर जोर देना होगा। साझा विकास का अर्थ है कि सबका विकास हो, हम हर क्षेत्र में आगे रहें और भारत के हर वर्ग का विकास हो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाए और काफ़ी बड़ा वर्ग जो सुविधाएं सरकार देती है या विकास की जो योजनाएं सरकार चलाती है उनसे वंचित रह जाए। तो इसलिए भारत सरकार का जो ये एक उद्देश्य है, हमारी वर्तमान सरकार का जो उद्देश्य है कि सबका साथ हो, सबका विकास किया जाए और साथ ही साथ सबका विकास विश्वास भी जीता जाए। तो प्रीति, क्या लगता है आपको कि कहाँ तक हमारी सरकार इस नारे पर कि सबका साथ सबका विकास पर खरी उतरी है?
1: पूरी तरह खरी उतरी है, क्योंकि सरकार ने सबके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। अब जैसे हम देखते हैं, उज्ज्वला योजना है या आधारभूत संरचना है, ये सब चीजें क्या होती है, ये इसीलिए बनाई जाती है योजनाएं वगैरह, कि आम इंसान भी एक सीमा तक आगे बढ़ सके। वो ये ना सोचे कि मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, तो मेरे ये योजनाएं क्या काम की, या फिर मैं सबके बराबर नहीं चल सकता। उस सबको मिटाने के लिए आज गाँव में भी हम देख रहे हैं कि बिजली, पानी, इंटरनेट की एक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी की गई है। इसीलिए किए कि गांव जो पीछे रह गया था शहरों से, वो आज सबके बराबर चल रहा है। और पढ़ाई को लेकर भी तो सरकार ने हर जगह ये चाहा है कि जो गरीबी सीमा से नीचे परिवार है, वो आज गरीबी की सीमा से ना रहे, उन्हें भी वो सारी योजनाएं मिले। हम देख रहे हैं कि आजकल उज्ज्वला योजना है, उसमें महिलाओं को गैस कनेक्शन फ्री दिए जा रहे हैं। किस लिए दिए जा रहे हैं? क्योंकि गाँव की महिलाएं आज भी चूल्हे पे खाना बनाती थी, वो आंखें जलती थी, मतलब बहुत सारी परेशानियां होती थी। उन सब परेशानियों को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाए और ऐसी योजनाएं बनाई। तो आज हम उनकी योजनाओं की सराहना करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं। और जैसे पोषण योजना, स्कूलों में सरकार ने पोषण योजना चालू करी, तो ये सब इसीलिए किया कि देश का विकास होगा। एक सबसे बड़ी सुधा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, भेदभाव। एक तो गरीबी वाला, एक जाति वाला, ये ऐसा भेदभाव है कि इंसान के अंदर एक दिमाग में कीड़े की तरह हो गया है कि अपनी जाति का है तो ठीक है, पराई जाति का है तो कोई मतलब नहीं है। और एक पैसे का, कि ये गरीब है, ये निर्धन है, ये अमीर है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इन चीजों का भेदभाव ही देश का विकास नहीं होने दे रहा है। एक जातिवाद और एक निर्धनता, ये दोनों ही देश की रुकावट में आते। तो यही सब मिटाने के लिए मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये योजनाएं बनाई थी, इसलिए देश का विकास हो सके। जब हम मन में ये सोचेंगे ना कि ये विकास कब होगा, कैसे होगा, तो ये इसी पहल का है कि आज बहुत सारी योजनाएं मिल रही है लोगों को, जिनका तो ये है कि कईयों को तो पता भी नहीं है। तो बस इन योजनाओं के जरिए देश का विकास हो सकता है। और ये अपने मन में ये लाने के लिए कि हम सब एक हैं।
0: सही कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सबका साथ यानी सभी की भागीदारी, सबका विकास यानी सभी की प्रगति। सबका साथ सबका विकास, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलना और सभी के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना है। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब हर वर्ग, गरीब, किसान, महिला, युवा, श्रमिक और ग्रामीण, शहरी, सभी लोग विकास की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और इसका उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी सेवाएं और अवसरों को सभी तक पहुंचाना। इस सोच का संदेश है कि विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिले। जब सभी लोग साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तभी देश मजबूत और समृद्ध बनता है। और प्रीति, मैं आपकी इस बात से तो पूरी तरह से सहमत हूँ कि लोग आज कभी और कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं अमीर और गरीब को देखा जाए तो लोग बटे हुए हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर अलग हो जाते हैं, तो कभी भाषा का राग अलापना शुरू कर देते हैं। समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है कि देश में एकता होनी चाहिए। और एकता तभी आ सकती है जब हम सब अपने मन में ये भाव रखेंगे कि हम सब एक हैं। और सरकार तो समय समय पर कई योजनाएं लेकर आती है और इन योजनाओं प्रीति, एक बात मैं आपको और बताऊं कि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए भी हमारी सखियों को ऐसी कई योजनाओं की जानकारी देते हैं जिन योजनाओं से वे लाभान्वित हो सकती है, और अगर वो उस दायरे में नहीं भी आती है तो अपने आसपास की जो बहनें हैं उनको जागृत कर सकती है कि भाई ये योजना आई है, वो योजना आई है, तो इन योजनाओं का लाभ उठाइए। तो सरकार सबके विकास को लेकर प्रयास कर रही है, और इन प्रयासों को हम भी कह सकते हैं कि मीडिया के द्वारा भी इन प्रयासों को आगे बढ़ाने और जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। तो प्रीति, हम फिर अपनी सखियों को लेकर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं बेहद ही खूबसूरत सा एक नगमा।

0: बहनों, अभी आप जो प्यारा सा गीत सुन रहे थे, फिल्म थी जुदाई। गीत को आवाज दी थी अलका याग्निक, हरिहरन, जसविंद नरूला ने। सुधा, हम बात कर रहे थे सबका विकास और सबका साथ। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, ये चीज है जरूर है कि सबका साथ सबका विकास हो सकता है जब हम सब एक समान हो या एक समान एक दूसरे को समझें। और जब हम बात कर रहे थे कि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, किस लिए बनाई है कि सबका विकास हो चुके हो सके, तो उसमें एक योजना ये भी है, पीएम पोषण योजना। और ये योजना बहुत अच्छी है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये है कि एक तो सब बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो खाना मिलता है वो अच्छा पोषण वाला खाना हो। और एक ये है कि इससे बच्चों की जो स्कूल में अटेंडेंस है वो पूरी हो सके। सुधा, एक चीज है ना कि आजकल बिना लॉक के कोई काम होता नहीं है। और गांव में तो आज भी जैसे हम बात कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, इसलिए कि भाई घर की आर्थिक स्थिति नहीं है तो 2 पैसे कमा के लाएगा, अब पढ़ाई में पैसा लगेगा, ड्रेस लाओ, किताबें लाओ, उनकी एक ये सोच होती है। तो ये उन सोच को दूर करने के लिए योजना बनाई है सरकार ने कि इससे बच्चे भी ज्यादा आए और बच्चों को अच्छा खाना भी मिल सके और साथ में वो अपने आसपास के बच्चों का भी स्कूल में दाखिला करा सके।
1: एकदम सही कहा। और प्रीति, हमारी कोशिश तो रहती है कि हम इस कार्यक्रम के जरिए अपनी सखियों को कई योजनाओं की जानकारी देवें।

0: पीएम पोषण योजना जो है इसे मिड डे मील भी कहा जाता है और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख केंद्रीय योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को गर्म पौष्टिक पका हुआ भोजन प्रदान करके पोषण स्तर में सुधार करना और बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना है। इस योजना में कुपोषण को कम करना, छात्रों का ड्रॉप आउट रोकना और उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार करना है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को सप्ताह में 6 दिन निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन मिलता है और इसे प्री प्राइमरी स्तर पर या बाल वाटिका में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण के लिए भी विस्तारित किया गया है। भोजन में स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली ताजी मौसमी सब्जियां, दालें और पोषण युक्त चावल शामिल होते हैं और छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्व देने के लिए कई राज्यों में तो दूध और मौसमी फल भी दिए जाते हैं। और इस योजना की निगरानी के लिए पीएम पोषण पर एक रियल टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MISP संचालित किया जा रहा है। तो इस योजना का लाभ सबको लेना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमने बात की कि सबका विकास तो तभी हो सकता है जब हर वर्ग आगे आए, तो बच्चों का आगे आना भी बहुत ज़रूरी है। और हम गांवों में देखते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे कामों में लगा दिया जाता है और ये विशेष करके लड़कियों की अगर बात की जाए प्रीति, तो ये सोचा जाता है कि आगे पढ़ा के क्या करना है या पढ़ाई किस काम की, और छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल छोड़ देते हैं, उन्हें कामों पर भेज दिया जाता है ताकि 2 समय का सुकून से भोजन मिल सके। तो इसीलिए इस योजना में भोजन को शामिल किया गया है। और जो भी मैंने आपको कहा कि इसमें कई राज्यों में तो दूध और मौसमी फल भी दिए जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, इससे कई फायदे हो रहे हैं। बच्चे जो है वो स्कूल में रुकते हैं, उनका ड्रॉप आउट रुक रहा है, स्कूलों में नामांकन जो है वो बढ़ रहा है, लोगों का सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ रहा है, साथ ही साथ बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है, उन्हें श्रम से जो बाल श्रम करवाया जाता है उससे मुक्ति मिल रही है, और दूसरी तरफ ये देखें तो बच्चों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में भी लाया जा रहा है क्योंकि इससे बच्चों को पोषण युक्त भोजन भी मिलता है। तो बच्चे अपने आसपास के बच्चों को, जो प्रीति अभी आपने कहा कि अपने आसपास के बच्चों को भी प्रेरित करते हैं और स्कूल लेकर आते हैं, तो सखियों ये योजना अगर आप भी इस योजना के दायरे में आते हैं, आपके बच्चे भी अगर सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, तो इस तरह की योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। और नहीं तो अपने आसपास के लोगों को भी आप जागृत कीजिए, और अगर आप विशेष करके गाँवों में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजिए क्योंकि अब सरकार ने सब कुछ मुफ्त कर रखा है और साथ ही साथ दोपहर के भोजन की व्यवस्था करके बच्चों को पोषण युक्त भोजन के दायरे में लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्यारी सखियों, हम आगे भी चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश और साथ ही सुनेंगे एक प्यारा सा नगमा।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: बहनों, अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी अगर तुम ना होती। गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने। सुधा, हम देख रहे हैं ना कि अभी मौसम कैसा चल रहा है। थोड़ा बहुत ज्यादा गर्मी है कि कोई भी चीज घर में लाके रखते हैं, चाहे फल फ्रूट हो चाहे सब्जियां हो, बहुत जल्दी उसमें तो स्मेल आ जाती है, वो गल जाती हैं। अब ये है कि इतनी गर्मी में बार बार मार्केट भी नहीं जाया जाता है, तो सोचते हैं मार्केट किसी काम से आए तो दो काम और करके कि साग सब्जियां भी लेके चलें। अभी मार्केट में आम आए हुए हैं, तरबूज आए हुए हैं, तो सबसे फल भी साथ में लेके जाएं कि बार बार आने जाने का चक्कर बच जाए। पर ज्यादा स्टोर करते हैं तो चीजें खराब हो जाती है, कई बार समझ में नहीं आता गर्मी में बार बार कैसे जाएं। तो बस बहनों, ये है कि अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक तो ये है ना कि हर दूसरे दिन आप फ्रिज की सफाई कीजिए, क्योंकि अभी हम देखें लाइट भी जाती है तो फ्रिज में पानी भी जमा हो जाता है, वो पानी रस रस के सब्जियों में आता है। तो ये बहुत सी चीजें होती है जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे मार्केट में नींबू बहुत आए हैं, तो सोचते हैं नींबू पानी बनाएंगे तो एक साथ स्टोर करके ले आते हैं। अब लाते हैं, थोड़े दिन बाद वो नींबू गलने लग जाते हैं, एक नींबू गलता है तो सोचिए चार पांच नींबू और गला देता है। तो इनका रख रखाव बहुत जरूरी है। तो बस कुछ नहीं करना है बहनों आपको, अगर आप मार्केट से ज्यादा नींबू लेके आ गए हैं तो पहले तो आप लाती सारी सब्जियों को एक बार धो लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कितने हाथ लगते हैं, कितने बैक्टीरिया लगते हैं चीजों पे। और लाती बच्चे फिर आम वगैरह ऐसी चीजें बच्चे लाती खाते हैं, तो अगर धो धोवा के फ्रिज में रखे तो जब बच्चों का मन करे वो खा सकते हैं। तो नींबू है, अब लेके तो आ गए, लेकिन आप उनको क्या कर सकते हैं कि नींबू जब ज्यादा लाए तो उसको धो के सुखा लीजिए। सुखाने के बाद अगर आपके घर में फॉइल पेपर है, अगर फॉइल पेपर नहीं है तो पेपर न्यूज पेपर तो होता ही है, एक एक नींबू को आप अलग अलग उसको रेप पैक कर लीजिए और फिर एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लीजिए। पर यह है कि आपको हर दूसरे दिन डब्बे का ढक्कन खोल के उसको पोंछना पड़ेगा, उस पर नमी आ जाएगी। जब नमी आएगी तो कागज गीला कर देगा, और कागज गीला होती दिखती बात है कि अंदर वाली चीज भी गीली हो जाएगी। और एक है, जैसे मार्केट से हम मिर्ची वगैरह लेके आए हैं, तो मिर्ची के भी अगर आप ज्यादा लेके आ गए, आप स्टोर करना चाहते हैं, तो आप मिर्ची के डंठल काट के और एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लीजिए। आप जितने दिन चाहेंगे वो मिर्ची को स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सुधा, जो हम मार्केट जाते हैं लेके तो आते हैं लेकिन बाद में केयर नहीं होती, और वो होके वो बाहर डाल देते हैं, और जी भी दुख पाते हैं कि पैसे भी लगे और गर्मी में परेशान हुए जो अलग। तो सुधा, जैसे फल सब्जियां हैं, अब आम वगैरह हैं, तो इनको आप केयर करें, और बहुत सारे लेके आते हैं तो इनकी केयर भी बहुत जरूरी होती है, तो इनकी केयर अब आप कैसे करें?
1: एकदम सही कहा, सफाई स्वच्छता रखना तो बहुत जरूरी है। और कई सब्जियां ऐसी होती है जैसे आलू है, टमाटर है, इन्हें फ्रिज में नहीं रखा जाता है क्योंकि फ्रिज में जल्दी खराब हो जाते हैं। प्याज है तो इन्हें बाहर रखना चाहिए, और बाकी हरी सब्जियों को नमी की जरूरत ज्यादा होती है तो उन्हें हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए। और अगर सब्जियां कट कर दी है तो पॉलीपैक में डालकर भी उन्हें हम फ्रिज में रख सकते हैं। और बाकी सखियों, प्रीति ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है और अब घड़ी इशारा कर रही है, तो प्रीति क्यों न जाने से पहले हम अपनी सखियों को एक प्यारा सा गीत

0: सुधा, बातें तो बहुत सारी करनी थी अपनी सखियों से, पर करें क्या, घड़ी की सुइयां हमें अपना प्रोग्राम यहीं रोकने के लिए कह रही है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए,
1: हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हम आपसे जल्द मिलेंगे और ढेरों बातें करेंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और प्यार भरा
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मुमल्लिया आकाशवाणी का, जैसलमेर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है मिड डे न्यूज। और इसी के साथ 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। इन समाचारों को हम जयपुर दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।
1: Created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Center restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of the CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB were present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. President Draupadi Murmu arrived in Dehradun today on a 2-day visit. She was welcomed by Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh, retired, and Chief Minister Pushkar Singh Dhami upon her arrival. As per the scheduled program, the President will visit Rashtrapati Niketan in Dehradun today and inspect the ongoing construction and development works of the Rashtrapati Udyan being developed over an area of 132 acres. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The agency said it is committed to ensuring that NETUG 2026 examination is conducted in a manner that is fair, secure and responsive to the needs of candidates. More from our correspondent.
4: The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. The agency said in a statement that these improvements are based on feedback received from candidates over the years. Apart from this, the agency said that the space for rough work in the question paper booklet has been increased from 2 pages to 4, giving candidates more room for calculations and diagrams. Based on the feedback that the old layout was inconvenient for some students, especially those who are left-handed, the booklet's design has also been updated. Two rough work pages are now placed at the beginning immediately after the instructions, while the other two remain at the end. This new layout applies to both English and regional language versions, so all candidates can work comfortably. NTA said that even small improvements in examination design can have a positive impact on the experience of candidates during a high-stakes examination. These measures have therefore been introduced with the objective of making the examination process more comfortable and candidate-friendly while maintaining the highest standards of fairness and security. Candidates are advised to read the instructions given in the admit card and information bulletin carefully and cooperate with the examination staff for the smooth conduct of the examination. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh. The Supreme Court declined to interfere with the returning officer's decision rejecting her nomination for the Rajya Sabha elections over the alleged non-disclosure of a criminal case in Telangana. A bench comprising Justice Prashant Kumar Mishra and Justice A.S. Chandurkar observed that once a returning officer rejects a nomination paper, the statutory remedy available to an aggrieved candidate is to approach the Election Commission. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate the Bharat Innovates Summit in Nice, France on Sunday. Talking to Akashvani News, Ambassador of India to France Sanjeev Singla said, "The idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by the Ministry of Education." He informed that there are over 120 deep tech startups covering 13 areas which have been selected from over 1,200 startups.
5: Prime Minister would be here on the 14th of June. Both President Macron and Prime Minister Modi would be inaugurating Bharat Innovate Summit in Nice, which is the largest ever deep tech event being held by India outside of India. The idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by Ministry of Education. There are 120 deep tech startups covering, I think, 12 or 13 areas, which have been selected from over 1,200. And some of these startups cover critical areas when it comes to sustainable development, blue economy, or next generation manufacturing, next generation communication.
1: The Prime Minister is scheduled to visit Nice, France on the 14th of June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The visit carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Meanwhile, Secretary General of IMO has underscored the need to protect seafarers, civilian shipping, and the freedom of navigation at all times.
6: We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Citadel tanker that was hit and a number of Indian seafarers were killed. And that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization. And we fully support and second that language.
1: The two-day BRICS Agriculture Ministers Conference began today in Indore, Madhya Pradesh. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan welcomed all delegates and stressed on carrying forward the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, the idea that the whole world is one family. He said, under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India's approach is built on peace over war and cooperation over conflict. The minister said the country's total food production has risen to nearly 376 million tons. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people have been killed and 37 others wounded as the Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground. Although the demonstration started peacefully yesterday, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalpindi to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. The demonstrators were demanding justice for the 30 people who were killed and 200 injured in clashes between protesters and security forces in POK on Tuesday. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Palikesh Narayan Singh Deo, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. A report.
7: Born in Uttarkashi, Uttarakhand, Rana leaves behind a legacy that spans more than three decades as a shooting legend and national coach. He won multiple medals at the Asian Games and Commonwealth Games. Rana won a gold medal at the 1994 Milan World Championship in the junior category with a world record score, announcing his arrival on the global stage at the age of just 18. Jaspal has been widely credited as the man behind ace shooter Manu Bhakar's rise in the sport. Apart from Bhakar, Rana worked closely with several leading pistol shooters including Saurabh Chaudhary, Anish Bhanwala and Chinki Yadav. He was awarded the Arjuna Award in 1994, the Padma Shri in 1997 and the Dronacharya Award in 2020. Indian shooting has lost one of its finest ambassadors, athlete, mentor and sports journalism has lost a knowledgeable guide. Sayukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and other leaders have expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-host Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. Today, co-host Canada will be up against Bosnia-Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6-21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The India Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
8: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
5: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
8: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक

0: जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, अब से लेकर 5:30 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को हम मुंबई के आकाशवाणी केंद्र से रिले करेंगे।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।
1: ए झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत

तुम्हारे महल चौबारे नहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे नहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।

होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।

0: भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
1: मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुनिए रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना। रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी तरसती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली डलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

0: दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार में।
1: तेरे प्यार का दामन।

0: इनसे कह दो यही ठहर जाए।
1: हम पढ़ रहे हैं कि तेरी

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों की दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस एक घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे।
1: इतना तो आज बहुत खुश, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज जी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है। चांदनी जी क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी क्या बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा क्या बात है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक टैंक में है बेटा।
0: अच्छा तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले, खाकी कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे। उसके बाद जो किट बोलते हैं वो किट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नोजय सवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
0: झांसी से धन्नोजय सवाल। धन्नोजय, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 3 बच्चे हैं
0: जी। तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और अब 2 लड़कियां हैं, वो दिल्ली में है, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी। जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए,
1: आप ही की बिन
0: जी। तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी, जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ
0: जी।
1: बताइए
0: जी, हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी
0: हूँ,
1: पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ
0: जी। तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी, सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको नाखुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे साथ दुनिया किसी के लिए।
0: जी, बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती एलर सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से।
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा हाँ। चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मस्त हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पर बैठी हूँ, पाटी चौक में
0: जी।
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल। तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
1: बहुत बहुत बहुत
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं।

0: है और मित्र जो है तो कर्म बेच रहे थे यहाँ
1: जी
0: पे।
1: जी तो मैं ये
0: हाँ
1: पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे
0: हाँ
1: थे तो गर्मी की छुट्टी के
0: हाँ
1: बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना, तो उन दिनों
0: हाँ
1: में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे हुआ करता था आपके घर में?
0: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते तो पढ़ाई नहीं से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो पेंसिल लो कुछ कुछ बॉक्सेस लो पेंसिल लो राइटिंग के ड्राइंग के इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको भी वैसे कॉपी करते थे।
1: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
0: ओ बहुत बहुत
1: करते थे?
0: हाँ ये शाम भी करते थे ना वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर सफेद के हम
1: हाँ
0: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
1: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ
0: हाँ
1: आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
0: बहुत बहुत मैम
1: जी, आपसे बात करके हमें
0: बहुत बहुत
1: बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
0: हाँ
1: बताइए आप कौन सा गीत
0: जिंदगी
1: सुनना चाहती हैं?
0: हर कदम एक नई जंगल है उनको पसंद
1: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है
0: है
1: इसलिए आप सुनना चाहती
0: बहुत
1: हैं।
0: पसंद है
1: तो
0: यस
1: चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

नई हर कदम एक नई जंग है जिंदगी हर कदम एक नई।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: जी तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है, बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूला, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना।

0: बनाना। दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं से खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हमसफर एक ऐसा आशियाना बनाना। मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगले कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए, आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से। मैं
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की। पापड़
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं।
1: बनाते, ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर दे बनाते।
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के, जैसे सब लोग जॉब के रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए।

0: तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।
2: देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है। जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली
0: जी।
1: तो मैं वहीं पर रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है, बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ है, किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा

0: फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
0: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे। वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा। अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगी उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
1: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। मेरा
0: नमस्ते। ये तो बताइए, नाम क्या है आपका?
1: नाम सुनीता उइके है। मैं
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी, सिकंदरा से। तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है
0: अच्छा
1: और बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी
1: हाँ,
0: है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ दीदी।
0: जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पत्नी है, दो बच्चे।

0: जी
1: हाँ।
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय ही मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी उसका काम मैं ही कर देती।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ
0: जी।
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दिए बच्चे, अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ।
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई हो तो मम्मी करी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना की मंसूरी बोल रही हूँ, सालगाना का इंडस्ट्री मैडम
0: जी। ये
1: जी।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ, जाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: खजाना ढूंढता दिल का सोना चांदना ढूंढेगा तीर निगाहें नाथ निशाना ढूंढेगा।
1: सखियो आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228702888, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारे इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोरे ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
2: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना हम क्या करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का।

दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी। फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपती हुई नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह।

कमरे की खिड़कियां चमक रही थी, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटी लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुराने फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधी किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने?
1: अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
0: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
1: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है।
0: मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो।
1: वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
0: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
1: कोई जरूरत नहीं है।
0: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
1: नहीं।
0: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
1: तकरीबन 40 पसंद पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
0: तुम पहले नाश्ता करो।
1: नहीं।
0: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
1: पक्का ना?
0: हाँ पक्का।
1: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और

परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लो। प्रेम ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत। तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर ले, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नींद दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू, प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई। लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया तेरा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया।

आंखें बनी पैमाने, दिल हुए मस्ताने, राहें पड़ी।

0: कैद हुई तकदीरें, नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरें।
1: अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि के मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली की पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं, सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हूँ, मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हूँ? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरे भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना?
2: नहीं।
1: देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना।
2: नहीं जा रही।
1: शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना।
2: बुआ, मैं आ जाऊंगी।
1: पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा।
2: बुआ, मुझे खुले बाल पसंद है।
1: अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना।
2: आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ?
1: पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो,
2: क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जींस और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

Il tempo vola. Prendilo, prendilo, amore mio.

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रही। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। ये तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

0: दिन अभी आपने
1: मौत की बहन और हकीकत है जिंदगी।
2: जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था, बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ, मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया, फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदा बांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बना

आकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद की इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

0: सब की बात ले चल पार, ले चल पार, मेरे साधन है उस पार।
1: अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियां और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से

चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी, लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ भी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था, हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गई। क्योंकि यही सच है, अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर।

इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान दब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बाल श्रम विरोधी दिवस के बारे में। जी हाँ, बाल श्रम, जिसे कि हम कह सकते हैं जो चाइल्ड लेबर जो है उसके अगेंस्ट जो है वर्ल्ड डे मनाया जाता है। जी हाँ, और हर साल 12 जून को इसे मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन ये दिवस मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का हम यूं कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की समस्या को खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है और बच्चों को शिक्षा तथा बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, ये दिन जो है सिर्फ एक प्रतीकात्मक अवसर नहीं है, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया भर के बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और गरिमापूर्ण बचपन को सुनिश्चित करने के लिए एक संकल्प का दिन है। बाल श्रम की सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना इसका उद्देश्य है। लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना, सभी बच्चों को उचित शिक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ये सब जो है बातें, ये उद्देश्य जो है इस दिन को मनाने का है। और इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। जी हाँ, तब से हर साल 12 जून यानी कि आज ही के दिन को पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बच्चों के श्रम करने के पीछे आमतौर पर समाज में मौजूद कई कमियां जिम्मेदार होती है। हम कह सकते हैं सबसे पहला गरीबी। जी हाँ, आर्थिक तंगी के कारण माता पिता अपने बच्चों को मजदूरी पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, शिक्षा तक पहुंच न होने पर या फिर यूं कहें कि सही शिक्षा का अभाव होने पर भी जो है बाल श्रम एक कारण बन सकता है। और सबसे जरूरी है कि जागरूकता में कमी। जी हाँ, बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज में जानकारी की कमी है, तो इस कारण भी जो है बाल श्रम होता है और कई जगह पे आज भी जो है ये चलता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में सरकार और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बच्चे को श्रम में न धकेला जाए, यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो मजदूरी ना करे। बाल श्रम का विरोध करने के लिए सही मंचों का उपयोग किया जाना चाहिए। बच्चों को शिक्षा के अवसर जो है वो प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये चीजें अगर हर कोई व्यक्ति जो है, हर जिम्मेदार नागरिक अगर इसकी यूं कहें कि जिम्मेदारी उठाए या कर्तव्य निभाए, तो बाल श्रम को हम पूरी तरह से जो है मिटा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। और ये हम कह सकते हैं, इसमें कहने में मतलब कोई दोराय नहीं है कि जो ये जीवन का स्वर्णिम काल होता है हमारा बचपन, जब आंखों में इंद्रधनुषी सपने होते हैं, मन में असीम जिज्ञासाएं होती है और भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा दिखाई देता है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके बच्चों की मुस्कान, उनकी शिक्षा और उनके सुरक्षित बचपन से होती है। पर दोस्तों, विडंबना ये है कि आज भी दुनिया के कई बच्चे जो हैं उस बचपन से वंचित है, और जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। जी हाँ, बचपन को स्वर्णिम काल की तरह जीना हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कई कारण ऐसे हो जाते हैं, चाहे वो गरीबी है, चाहे अशिक्षा है, तो ये कारण जो है वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। किसी कारण से माता पिता, गरीबी होती है, तभी वो बाल श्रम की ओर जो है बच्चों को जाना पड़ता है। तो हम इसके बारे में आगे और बातचीत जारी रखेंगे। हम फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने

0: से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाल श्रम जो है उसका, हम यूं कहें कि बाल श्रम विरोधी दिवस है, लेकिन हम फिलहाल आपको बताएं कि बाल श्रम आखिर है क्या। तो दोस्तों, सामान्यतः वो कार्य जिसमें कोई बच्चा अपनी आयु, शारीरिक क्षमता और मानसिक विकास की प्रतिकूल परिस्थितियों में आर्थिक लाभ के लिए काम करने को विवश हो जाता है, जिसके कारण उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और यूं कहें कि समग्र विकास जो है वो प्रभावित हो, तो यही बाल श्रम होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर प्रकार का कार्य बाल श्रम नहीं होता। परिवार के साथ हम अगर बात करें कि परिवार में रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, तो परिवार के साथ जो है वो रहना, सीमित और सुरक्षित कार्यों में सहयोग करना या फिर पारंपरिक कौशल सीखना, घर के सामान्य काम में सहभागिता करना, ये सब चीजें बाल श्रम के श्रेणी में नहीं आती। पर जब किसी बच्चे को नियमित आय अर्जित करने के लिए खतरनाक परिस्थितियों में काम करने या विद्यालय छोड़ करके पूर्णकालिक श्रम में धकेल दिया जाता है, तो वो जो है बाल श्रम कहलाता है। दोस्तों, समय के साथ हम कह सकते हैं कि बाल श्रम के स्वरूप ही बदल गए। पहले जहां पर बच्चे मुख्यतः कारखानों में, खदानों में, खेतों में दिखाई देते थे, वहीं आज वे उद्योगों में, कचरा प्रबंधन में, ई कॉमर्स जो आपूर्ति वाले जो यूं कह सकते हैं कि श्रृंखलाएं हैं, छोटे उत्पादन केंद्र हैं, फिर डिजिटल माध्यम है, इनके द्वारा भी कार्य करते दिखाई दे देते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था ने शोषण के तरीके बदले हैं, लेकिन समस्या का मूल स्वरूप आज भी हम कहें तो कहीं ना कहीं वैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके ऐसा नहीं है कि बाल श्रम के खिलाफ जो है सरकार कुछ नहीं कर रही है या ऐसा हर तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कहना, जैसा हमने बताया कि ये जो काल होता है स्वर्णिम काल, ये बहुत प्रकृति की देन होती है। इतनी सुंदर बचपना जीना, यानी कि ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई अगर कहता है कि मैंने तो अपना बचपन बड़े ही अच्छे तरीके से जिया है, यानी कि खेलना, कूदना, पढ़ना, हर चीज उसमें जो है शामिल होती है, लेकिन कई बच्चे जो हैं इससे वंचित रह जाते हैं, तो उन बच्चों को किस तरह से फिर से उनके बचपन की ओर जोड़ा जाए, तो इसके लिए सरकार जो है वो बहुत सी यूं कहें कि पहल करती है, उपलब्धियां देती है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो बच्चों की सुरक्षा और विकास को विशेष महत्व देता है। जी हाँ, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित करने पर रोक। अनुच्छेद 39 एवं ई एवं एफ बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की रक्षा का निर्देश। इसके अतिरिक्त दोस्तों, बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986, संशोधित 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा के महत्वपूर्ण कानूनी साधन है, और इसीलिए जो है सरकार पूरी तरह से बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन सब, हम कहें कि कानूनी, उसमें कानूनी जितने भी दांव पेच है वो यूज करती है, ताकि बच्चे जो हैं बाल मजदूरी से, बाल श्रम से दूर रहे। और सरकार की बहुत सी उपलब्धियां भी हम कहें कि सरकार ने प्राप्त की। भारत सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं जो है वो संचालित की। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, बाल श्रमिकों की पहचान, बचाव, पुनर्वास और शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, और मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, कुपोषण कम करने में ये सहायक रहता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में अच्छा जो है आहार दिया जाता है, अच्छा भोजन दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देकर के बच्चों को श्रम से दूर रखने का प्रयास। दोस्तों, इन पहलों से सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य अभी कुछ और दूरी पर है, लेकिन उसे भी हमें तय करना है। तो अगर हम बाल श्रम जैसी जटिल समस्या का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण से अगर हम संभव कर सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित

होनी चाहिए। गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कानूनों का कठोर अनुपालन होना चाहिए। बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। कॉरपोरेट क्षेत्र अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाल श्रम मुक्त बनाए। पंचायतों, विद्यालयों, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। तकनीक आधारित निगरानी और डेटा ट्रैकिंग को मजबूत किया जाए। समाज में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाए। तो दोस्तों, अगर ये सब बाल श्रम मुक्त भारत हो जाएगा, अगर ये हमारी आगे की राह रही, तो हर बच्चे को उसका आसमान लौटाना होगा। जी हाँ, बाल श्रम केवल एक आर्थिक या यूं कहें कि सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि मानवता की संवेदनशीलता, नैतिकता और सामूहिक उत्तरदायित्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसकी ऊंची इमारतों, बढ़ती जीडीपी, आधुनिक तकनीक या औद्योगिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहां के बच्चों का बचपन कितना सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक है। यदि किसी बच्चे के हाथों में किताबों के स्थान पर औजार हो, यदि उसकी कंधों पर सपनों की जगह श्रम का समय बोझ हो, तो विकास के सभी दावे खोखले और अधूरे प्रतीत होते हैं। दोस्तों, बचपन किसी कारखाने की भट्टी में जलने, खदानों की अंधेरी जो सुरंग है उनमें जाने या घरेलू श्रम की बेड़ियों में जकड़े रहने के लिए नहीं है। वो तो जिज्ञासा, सीखने, सृजन, खेल, कल्पना और अनंत संभावना के उजास में खिलने के लिए होता है। और प्रत्येक बच्चा अपने भीतर भविष्य का एक संपूर्ण संसार समेटे रहता है। बाल श्रम उस संसार को समय से पहले अंधकार में धकेल देता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं, बल्कि हम यूं कहें कि आत्म मंथन और संकल्प का दिवस है। ये हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त है। सरकार, समाज, परिवार, उद्योग जगत और हम कहें कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है कि वे ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां कोई भी बच्चा विवश होकर श्रम न करे। प्रत्येक बालक बालिका अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्राप्त कर सके। और जब तक समाज का अंतिम बच्चा भी श्रम की बेड़ियों से मुक्त होकर विद्यालय की चौखट तक नहीं पहुंच जाता ना दोस्तों, जब तक हर मासूम चेहरा और अभाव से मुक्त होकर मुस्कुरा नहीं उठता, तब तक विकास की हर यात्रा पूर्ण नहीं की जा सकती। इसीलिए दोस्तों, आइए हम केवल बाल श्रम दिवस का विरोध ही नहीं करें, बल्कि हम बाल अधिकारों के संरक्षण और बाल शिक्षा के विस्तार का भी संकल्प लें। ऐसा भारत निर्मित करें जहां किसी भी मासूम का बचपन मजदूरी की आग में न झुलसे, किसी बच्चे के सपने गरीबी और शोषण के बोझ तले न दबे, और जहां हर हाथ में औजार नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कार और भविष्य का प्रकाश फैलाने वाली पुस्तक हो। याद रखें दोस्तों, बचपन को श्रम नहीं शिक्षा चाहिए, हाथों को औजार नहीं किताबें चाहिए, और हर बच्चे को केवल जीवित रहने का नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अवसरों के साथ विकसित होने का अधिकार चाहिए। यही तो एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और विकसित समाज की पहचान है। तो इसीलिए हम सबको जागरूक होना होगा और बाल श्रम के विरोध में कदम से कदम मिलाना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम चलेंगे फिल्म संगीत की दुनिया में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: पता है।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में फरीब फिल्म का ये गीत। दोस्तों आइए अब हम सुनते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में युवाओं को अवसर ताराचंद इणखिया से श्यामवीर सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओ नमस्कार। श्रोताओ हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है और आज की तारीख में हम बात करें तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं और युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है रोज़गार की। हमारे युवा अपने देश में रह करके मनपसंद यानी अपनी पसंद का रोज़गार प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं और समय समय पर हम उनके प्रशिक्षकों से या उन इंस्टीट्यूट के जो यूँ कहें के छात्र हैं और वहाँ के संस्था के प्रचार होते हैं उनसे हम आपकी बातें करवाते रहते हैं। और आज मेरे साथ हैं नर्सिंग महाविद्यालय के प्रशिक्षक ताराचंद जी इणकिया। सर आज हम जानेंगे कि नर्सिंग का जो क्षेत्र है युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है और युवा इस क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, पहले तो आपका स्वागत करते हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में और पहले हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि आप की शुरुआत इस प्रोफेशन में आने के लिए कब से शुरुआत की थी और कैसे आप आए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी जैसलमेर का कि आपने मुझे मौका दिया और ये मंच दिया कि जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर के जो अपने रोजगार को जो कौन सा प्रोफेशन चुने उसी प्रोफेशनों के तहत आपने मुझसे जाना चाहा कि मैं नर्सिंग के प्रोफेशन को कहाँ से शुरुआत करी। तो बताना चाहूँगा 2008 से लेकर के 10 तक जो मैंने GNM का कोर्स बीकानेर से करा और उसके तुरंत पश्चात मैंने मेडिकल कॉलेज बीकानेर के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर के अंदर मैंने मेरा पदस्थापन हुआ और उसके पश्चात मेरा जो सन 2016 से नियमित होकर के मैं मेरे जो होम डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर के अंदर में गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है श्री जवाहर चिकित्सालय उसमें पोस्टेड हुआ। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सफ़र रहा निसंदेह बेहद ही खूबसूरत और ये नर्सिंग का जो प्रोफेशन है लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ है, जैसे लोगों के स्वास्थ्य से जो पहली कड़ी होती है जो चिकित्सक को माना जाता है, स्वास्थ्य से पैसे से जुड़े हुए हर एक प्रोफेशनल्स को जो भी लोग जुड़े उनको बोला जाता है कि ये भगवान का रूप है। निसंदेह है यही इसी की यही जो भावना थी कि लोगों की सेवा तन मन इवन धन से भी करी जाए, इस भावना को लेकर के मैंने मेरे माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुँचा। आज दो ट्रेनिंग के पश्चात गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो क्लिनिकल एरियाज मैंने चुना उसके पश्चात मैंने ड्यूरिंग सर्विस के साथ साथ भी मैंने जो मेरे एजुकेशन जारी रखी उसके साथ साथ मैंने डिग्री हासिल करी और डिग्री हासिल करने के बाद में ये जैसलमेर वासियों के लिए बड़ी हर्ष और खुशी की बात है कि पिछले 3 साल से जो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जैसलमेर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई। हालांकि पहले तकरीबन 20-22 सालों से यहाँ NM प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है जिसमें 23 या 24 बैच पास आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी विगत 3 वर्षों से जो डिग्री कोर्स को संचालित करने के लिए गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इन सर्विस में रहते हुए कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे मैं नर्सिंग प्रशिक्षक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और जो मैं जिस इच्छा से यहाँ मतलब प्रोफेशन को चुना था वो इच्छा मेरी जो है पूर्ण हो चुकी है। और मैं भी युवाओं को ये बताना चाहूँगा जैसलमेर के इवन प्रदेश देश प्रदेश के युवाओं को कि नर्सिंग का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके साथ में आप पैसा के साथ साथ में लोगों की भावना से जुड़ा भावनात्मक जुड़ाव रहता है, जो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। पैसा तो हर कोई कमा लेता है लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को उनकी उन्नति के ऊपर ले जा करके उनका जो देखभाल करना ये मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा कोई पुण्य हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा हम बात करें अपने युवाओं की जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, युवा कब से इसकी तैयारी कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट कौन से लेने चाहिए और यूँ कहें कि जो हमारी कॉलेज के अंदर रेगुलर पढ़ाई होती है अतिरिक्त क्या तैयारी करनी पड़े कि हमारा किसी नर्सिंग कॉलेज में हमारे युवा जो चाहते हैं उनका एडमिशन मिल सके।
2: जी वैसे स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करके आप बहुत मतलब कि इस प्रोफेशन को चुने, बहुत ही सिंपल ही है कि आप ट्वेल्थ के अंदर मोस्टली जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको वरीयता दी जाती है इस प्रोफेशन के लिए, वो डिग्री कोर्स करने के लिए होता है। इससे पहले जो स्कूल कोर्सेज चलते हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, जैसे ANM मैंने बोला आपको, जो 2 साल का कोर्स रहता है वो ट्वेल्थ बेस पे किसी भी संकाय के अंदर, जैसे साइंस है, साइंस बायो हो गया या मैथ्स हो गया या कॉमर्स हो गया, कोई भी जो स्टूडेंट्स है वो ट्वेल्थ पास करके ANM का कोर्स होता है, वो एक केवल मात्र महिलाओं के लिए होता है। उसके पश्चात में जो GNM का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा कोर्स है, तो GNM का कोर्स दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए संचालित किया जाता है, स्टेट विभिन्न देश की विभिन्न प्रकार के जो अपने स्टेट है उसमें किया जाता है। तो GNM का कोर्स दोनों कर सकते हैं, ANM का कोर्स केवल मात्र जो छात्राओं के लिए किया जाता है, दोनों के लिए ही जो आपके हमारे जो ट्वेल्थ बैकग्राउंड होना चाहिए और साइंस जिसके पास में है ट्वेल्थ में, तो उनको थोड़ा सा वरीयता दी जाती है। और ANM और GNM के कोर्स के लिए किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाता है, इसके लिए जो ट्वेल्थ में परसेंटेज होते हैं उनको वरीयता दे करके इस ANM और GNM के कोर्स में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद में जो जो उच्च अध्ययन के लिए अगर किसी की इच्छा हो, जिसे मैंने किया, तो GNM के बाद में अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कोई भी युवा करना चाहते हैं, तो उनको डिग्री कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और उसके डिग्री कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ में उस जो है ट्वेल्थ के अंदर साइंस होना बेहद ही जरूरी है,
1: और उसमें भी बायो होना चाहिए।
2: हाँ, उसमें भी साइंस बायो होना बेहद जरूरी है। बाकी उत्तरोत्तर अगर कोई अध्ययन में बहुत ही अभिरुचि रखता है तो वो MSc PhD तक भी होते रहते हैं, जो सुपर स्पेशलिटीज के अंदर आ जाते हैं।
1: तो कुल मिला के हम बात करें तो 3 कोर्सेज हैं, और एक ANM, GNM और फिर आता है डिग्री कोर्स, ये है BSc नर्सिंग,
2: BSc MSc PhD
1: आखिर PhD तक जा सकते हैं। अब हम बात करें जो युवा इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो क्या संभावना है आगे के, वो PhD करने के बाद उनको कौन सा पद मिलता है और कहाँ पर उनका पद स्थापन उनका होता है और क्या कार्य रहते हैं हॉस्पिटल में?
2: हाँ जी जी, तो जैसा कि आपने पूछा कि डिग्री या जो भी डिप्लोमा करने के बाद में जो एरियाज रहेगा, कार्य क्षेत्र रहेगा, वो क्या रहेगा, संभावना रोजगार की स्कोप क्या रहेंगे, निसंदेह इस प्रोफेशन के अंदर बेहद ही खूबसूरत और विभिन्न प्रकार के स्कोप है। जैसा कि मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर कोई क्लिनिकली एरियाज में जाना चाहता है, मरीजों की सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए सरकारी जितनी भी अस्पताल हैं और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, एम्स हो गया, PGI वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, ESI हो गया, नेवीज वगैरह में आराम से जो जा सकते हैं, और आपके एयरफोर्स वगैरह में जा सकते हैं, और इवन जो स्कूल्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट की, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स होती हैं, जैसे KV वगैरह हो गई, उनमें भी जो है नर्सिंग के स्टाफ को लगाया जाता है और बहुत ही डिमांड है। प्राइवेट सेक्टर का देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स वगैरह है, क्लिनिक्स है, नर्सिंग होम्स है, उसके अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर की आज के तारीख में बेहद ही जो है रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप विगत 4-5 साल पहले 2019 में कोविड हुआ था, तो उस दौरान जो नर्सिंग स्टाफ था उनकी सेवाएं बेहतरीन रही थी, और जिसकी बदौलत हमारा देश पूरे विश्व के अंदर जो कोविड जैसी गंभीर बीमारी थी, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के और निसंदेह चिकित्सक के साथ साथ में नर्सिंग ऑफिसर्स की सहयोग से उसे उभर पाया था। और इसके अलावा जैसा कहे अगर क्लिनिकली के अलावा बहुत सारे ऐसे जैसे इंस्टीट्यूशंस है जो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है जिसके अंदर किसी की अभिरुचि है कि वो चाहता है कि मैं क्लिनिकली ना कर जा करके शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए बेसिकली ANM GNM को छोड़ करके डिग्री मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री चाहिए होता है, और BSc पोस्ट बेसिक और MSc और PhD होल्डर जो लोग होते हैं वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और आपके जो ट्यूटर्स वगैरह है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर, ये सारे पदों पे जा सकते हैं।
1: अब हम बात करें एडमिशन की, जैसे आपने कहा कि एग्जाम होती है, तो जैसे आपने कहा था ANM की तो और GNM की तो सीधा 12th से अगर अच्छे परसेंटेज हैं तो उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो

0: थ्री कोर्सेज हैं उसके लिए कौन सी एग्जाम होती है, क्या हर राज्य में अलग होती है या पूरे देश में एक ही एग्जाम है?
1: जी, डिग्री कोर्स करने के लिए अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने स्तर से जो है एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर राजस्थान अब फिलहाल जो दो यूनिवर्सिटियां संचालित की जा रही, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी जयपुर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर, जो हाल ही में इसका पिछले साल इसका संचालन किया जा रहा है। ये दोनों यूनिवर्सिटियां CUET नाम से जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उस एग्जाम के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, जिस प्रकार से जो बच्चे स्कोर गेन करते हैं उस स्कोर के हिसाब से उनको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या जो जो टॉप कर देते हैं जिनका स्कोर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा होता है उनको गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है वो प्रोवाइड की जाती है, और जिनका थोड़ा सा स्कोर अच्छा नहीं होता है उनको प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट की जाती है।
0: अच्छा, अब हम बात करें, देखिए जो हमारे युवा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ये प्रोफेशन कैसा है और आप हमारे उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, इस प्रोफेशन में आएं, तैयारी करें, एग्जाम दें और लोगों की सेवा करें, क्या कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, ये प्रोफेशन बेहद ही, जैसा कि मैंने बताया, स्वास्थ्य की जो रीढ़ की हड्डी है, नर्सिंग का प्रोफेशन स्वास्थ्य क्षेत्र की जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जो नर्सिंग का प्रोफेशन है ये पैसे के साथ साथ में मानवता से जुड़ा हुआ है। वो लोग जो ह्यूमैनिटी शो करते हुए वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दुख दर्द को बांट करके उनके जो उत्थान करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना में पेशेंट घायल हो जाता है और उस दुर्घटना के दौरान पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल्स वगैरह लेके आ जाते हैं, तुरंत दुर्घटना के साथ जब पेशेंट को लाया जाता है तो उसके साथ में कभी कभार कोई नहीं होता है, तो उसकी जब देखरेख की जाती है तो केवल मात्र वहाँ नर्सेज ही होती है जो उसकी देखरेख करती है जब तक उनके परिचित या जो भी जान पहचान के लोग हैं वो नहीं आते तब तक। तो उनके साथ सहानुभूति, एम्पैथी, सिंपैथी जुड़ाव रहता है, जिससे जो प्रोफेशन चूज करते हैं लोग, जैसे हम लोगों ने चूज करा है, तो उससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। साथ साथ में जो परिवार को पालन पोषण करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आप इस जॉब में आकर के बहुत अच्छा खासा जो है आप जो इस प्रोफेशन के अंदर आप अमाउंट गेन कर सकते हैं, उसके साथ में मानवता से जुड़ा हुआ और जो आपके इस पैसे में आप आकर के लोगों की भलाई भी कर सकते हैं सहानुभूति पूर्वक तरीके से। तो ये प्रोफेशन बेहद ही खूबसूरत है और उन लोगों के लिए बेहद बहुत ही बेहतरीन है जो मन में ये भाव रखते हैं कि हमें लोगों की सेवा के साथ साथ में हमारे पालन पोषण के लिए, हमारे खुद के उत्थान के लिए इस पैसे को चुनना।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज युवाओं को बता रहे थे हमारे राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्रशिक्षक ताराचंद जी इड़किया के युवा किस प्रकार से नर्सिंग के प्रोफेशन में आकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और जो मानवता के प्रति, जिनके अंदर यूँ कहें कि ह्यूमिनिटी है, उनके लिए प्रोफेशन कितना अच्छा है। तो सभी युवाओं से हम तो आह्वान करते हैं कि आप सेवा भाव अगर रखते हैं तो इस प्रोफेशन में आकर के और सेवा कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तारातन जी, आप हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में युवाओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आकाशवाणी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे नर्सिंग प्रोफेशन में युवाओं को अवसर, ताराचंद इणकिया से श्यामवीर सिंह की बातचीत।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्रगण डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं फिर से फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाजों में गुरु फिल्म का ये गीत। अब हम आपको बता रहे हैं केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कुछ जानकारी। जी हाँ, इसको मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है और समय पर कर्ज चुकाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक का लाभ भी दिया जाता है। दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना में कुछ बातें हैं जैसे लोन राशि की है। योजना के अंतर्गत 3 चरणों में ऋण दिया जाता है। पहला लोन 10,000 रुपये, दूसरा लोन 20,000 रुपये और तीसरा लोन 50,000 रुपये तक का होता है। ब्याज दर और सब्सिडी की बात करें तो लोन का समय पर भुगतान करने पर सरकार द्वारा प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। डिजिटल लेन देन का लाभ भी है, यानी यदि आप डिजिटल माध्यम से पैसे लेते या देते हैं तो आपको प्रति माह 100 रुपये तक का कैश बैक भी मिलता है। और इसके लिए अगर हम पात्रता की बात करें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वाले, फेरी वाले और छोटे दुकानदार जो नगर निगम या नगर पालिका द्वारा प्रमाणित है, पात्र है, यानी कि इस सर्वेक्षण में शामिल है, वो जो है इसकी पात्रता उनके लिए है। और आवेदन की अगर प्रक्रिया की बात करें तो योजना के लिए आवेदन पीएम स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से या किसी नजदीकी बैंक या जनसेवा केंद्र और नगर निगम कार्यालय में जा करके किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ बात बताई पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दी। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि योग दिवस जो है वो नज़दीक आ रहा है। जी हाँ, हम सब जानते हैं 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो योग यानी कि एक ऐसी चीज़ जो हमें निरोग रखती है, यानी कि हमें रोगों से दूर रखती है। अगर हम योग करते हैं तो हम रोगों को अपने से दूर भगा सकते हैं। सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा कभी आपके कोई रोग। जी हाँ, नियमित योग और शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने की एक प्राचीन और प्रभावी पद्धति है। ये श्वसन तंत्र को सुधारता है, रक्त संचार बढ़ाता है। योग के लाभ जैसे कि हम बात करें, तनाव कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, और भी न जाने कितनी चीजें हैं जिसमें रोग हमारी योग जो है रोगों से दूर रहने में हमारी मदद करता है। जी हाँ, विभिन्न जितने भी रोग हैं उनके निवारण के लिए योग एक कह सकते हैं कि मुख्य अभ्यास है। अगर हम बात करें मधुमेह की, यानी कि डायबिटीज की बात करें, तो कपालभाति, मंडूकासन और अनुलोम विलोम नियमित रूप से करने से पैंक्रियास सक्रिय होता है, ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर की बात करें, यानी कि कई उच्च रक्तचाप है तो श्वासन और भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है और नाड़ी तंत्र को आराम भी पहुंचाता है। इसके अलावा हम बात करें एसिडिटी की, कब्ज की, तो पवन मुक्तासन और वज्रासन पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, पेट की गैस की समस्या से राहत दिलाते हैं। कई लोगों में जो है बैठे रहने से, ज़्यादा काम करने से, कुर्सी पर बैठने से कमर और गर्दन में दर्द हो जाता है, तो भुजंगासन, शलभासन और ताड़ासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और दर्द में आराम देते हैं। और मोटापा, जो कि एक आम समस्या हम कह सकते हैं, तो इसके लिए सूर्य नमस्कार और नौकासन शरीर से अतिरिक्त चर्बी घटाने में सबसे कारगर है। दोस्तों, योग हम कह सकते हैं केवल शारीरिक आसन नहीं है बल्कि ये एक प्राणायाम है, यानी कि

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का ये गीत। हम सबने संत कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा सुना है, काल करेसो आज कर, आज करेसो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगी कम। क्योंकि दोस्तों जीवन तो नश्वर है और किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए, तो कल का काम आज और आज का काम अभी करना चाहिए। जी हाँ, जीवन बहुत क्षण भंगुर है, यानी कि छोटा है। पल भर में विनाश या प्रलय, मृत्यु कुछ भी हो सकता है। तो ये अनमोल पल हाथ से निकल गया अगर हमारी, तो फिर आप अपना काम कब करेंगे? तो इसीलिए ये दोहा हमें टाल मटोल की आदत छोड़ने और समय के सदुपयोग की प्रेरणा देता है। जीवन अनिश्चित है, इसीलिए किसी भी आवश्यक कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। और इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखनी चाहिए, इस दोहे को, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगी कब।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हम तुम फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। यह रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

ये थे आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर से। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गाना।

0: राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी जातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।
1: बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदहि मति वीर।

लोग सब आए गए धन मणि चीर।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस कवान। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आप सुन रहे थे वंदन कार्यक्रम। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम जयपुर केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया है। आज देश भर में महिला नेतृत्व वाले विकास के सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियां

0: महिलाओं को सम्मान देने और सशक्तिकरण के लिए है। इससे महिलाएं आज विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचार के क्षेत्रों में नई उड़ान भर रही हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में भी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में हुई इस कार्यशाला में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने किसानों से कहा कि वे रसायन मुक्त अनाज तैयार करें, इस प्रकार के अनाज से कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण आज देश भर में खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निचले स्तर पर पहुंचना चिंताजनक है। उन्होंने सूक्ष्म जीव और मित्र कीट द्वारा मिट्टी को मुलायम करने और उर्वरकता बढ़ाने की पद्धति पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों ने पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसे प्राकृतिक खेती के तरीकों से मानव और मिट्टी दोनों की सेहत का ध्यान रखा है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती माता को जहरीले रसायन और कीटनाशकों से नुकसान होता है।
2: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं, जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें मिट्टी डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छाट करके उस पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सूख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे, ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब दो ढाई फुट का तीन फुट का हो जाता था तो हैरों से हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
1: बूंदी जिले के केशव राय पाटन, तालेड़ा और हिंदोली पंचायत समितियों में कामकाज में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बीडीओ सहित 11 कामकाज अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर ये व्यापक कार्रवाई की गई। इन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि श्री दिलावर ने हाल ही में इन पंचायतों का औचक निरीक्षण किया था। नीट यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने ये बदलाव करते हुए बताया कि अब परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा। इधर राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 का आयोजन इस साल 6 सितम्बर को किया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 14 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि इस बार ये परीक्षा 35 विषयों में आयोजित होगी। इसमें राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, फारसी और उर्दू 5 नए विषय शामिल किए गए हैं। प्रदेश में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। इनके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगम तरीके से दिया जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों के माध्यम से मौके पर ही विभिन्न विभागों से जुड़े काम किए जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया और लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बैरवा आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना क्रियान्विति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों को

0: प्रभावी रूप से लागू करने, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रोत्साहन राशि के साथ आवश्यक उपकरण भी देने को कहा। डॉक्टर बैरवा ने लोगों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों की नियमित फिटनेस जांच करवाने और चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर भी जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने युवा पीढ़ी से हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की है। श्री अठावले आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशे से समाज के हर तबके को नुकसान होता है। उन्होंने समारोह में सभी लोगों से अपने आसपास मौजूद नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। जातिगत जनगणना को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिली। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिली। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, SC ST को, OBC को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खिपी है, किनके पास मजूदेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: आज बाल श्रम निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। देश में भी कृषि, होटल उद्योग, ईंट भट्टों, पटाखा निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक समस्या और सामाजिक विषमता को जिम्मेदार बताया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर करौली में बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान में 12 जुलाई तक सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां होगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। उधर पाली के सुमेरपुर में एक बच्ची को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। और अब मौसम संबंधी जानकारी। राज्य में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में आज ओले भी गिरे। उधर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव चली और गर्म रात्रि रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आंधी बारिश की गतिविधियों में आज से बढ़ोतरी के आसार है। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभागों के कुछ भाग में गरज के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी बारिश की गतिविधियां 16 जून तक जारी रह सकती हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन आफ्टर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान कुछ स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: राजधानी जयपुर में किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने वाली रेंट अ कैब और बाइक रेंटल सेवाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के लिए किराए के वाहनों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये सख्ती की गई है। उन्होंने बताया कि कई व्यक्तियों और फर्मों की बगैर पंजीकरण के ही वाहन किराए पर देने की शिकायतें सामने आई हैं। श्री पचार ने बताया कि किराए पर वाहन देने के लिए परिवहन विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी रेंटल फर्मों को अपने कार्मिकों का पुलिस सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, वहीं पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। सीकर अपनी हवेलियों, बाटिक कला और धार्मिक स्थलों के साथ साथ शौर्य के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। इसी पहचान के साथ जिले की चिट्ठी की शुरुआत करते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं और बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों से अपने सैन्य और नागरिक दस्तावेजों की जांच कराने का आग्रह किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विजेंद्र सिंह महला ने बताया कि नाम, नाम की वर्तनी, जन्म तिथि तथा पारिवारिक विवरण में अंतर होने के कारण पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शैक्षणिक सुविधाओं और अन्य देय लाभों में कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जन आधार, राशन कार्ड तथा अन्य अभिलेखों का मिलान करने और आवश्यकता होने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर संशोधन करवाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल पीड़ित दिवस के अवसर पर सीकर के राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाल श्रम, मानव तस्करी और शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में किशोरों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने तथा भविष्य में अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे स्टेशन, बड़ा तालाब, मारू पार्क सहित कई स्थानों पर लोगों को तंबाकू और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। स्काउट गाइड के सदस्यों ने नृत्य, नाटिका, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर फतेहपुर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महावारी स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रबंधन और एनीमिया की रोकथाम की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि महावारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े भ्रम तथा सामाजिक वर्जनाओं को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित भोजन लेने और आयरन युक्त आहार अपनाने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में शहरी निकायों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से उड़ान 10 समर कैंप में महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कैंप में हस्तकला, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, योग, नृत्य और अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन सेवाओं, लाडो प्रोत्साहन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आमजन से कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत नगर परिषद द्वारा

0: खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, सरकार लारला 12 साल में महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती न बढ़ावो देवन सारू जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला राखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत न जन आंदोलन बनावन सारू भेड़ी जिम्मेदारी सागे काम करने की अपील कीनी। और प्रदेश का उगनी हल्का माय गरज चमक सागे बरसात, आतुनी हल्का माय लू रो कोप। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार लारला 12 साल माय देश बनावन रा काम माय महिलावां री पूरा बूता सागे भागीदारी रो एहसास करावन बाबत अनुकूल वातावरण तैयार किन्नो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि हर हल्का माय महिलावां री मौजूदगी नजर आ रही है। पेश है समाचार कक्ष सलेहा गाजी री रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री संस्कृत श्लोक रो जिक्र करता थका महिलावां ने देश बनावण री नींव बताई। आज देश भर माए महिलावां री अगुवाई माए विकास रा बेहतर नतीजा साफ नजर आ रहा है। स्वयं सहायता समूह रे जरिए गावाई हल्का री महिलावां ने ई माली तौरू खुदरे पाण उभी करी जा रही है। और केंद्र सरकार री नीतियां महिलावां रो मान बढ़ावण और वाने मजबूत बनावण सारू है। इनु महिलावां विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचार रा हल्का माए खूब आगे बढ़ रही है। केंद्र माए एनडीए रा राजरा 12 साल पूरा वेवन रा सिलसिला माए राज्य माई 3 दिन ताई प्रदर्शनियां लगाई जा रही है।
0: केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निवेश प्लेटफॉर्म रो प्रचार करता था का बतावन वाला वीडियो ने फर्जी बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय रिफैक्ट चेक इकाई वीडियो ने गलत बताता था का कहो का इन माए 22,000 रुपया रा निवेश मत है। रोजीना 80,000 और हर महीना 24,00,000 रुपया मिलन रो दावो करीचियो है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई रे मुजब ओ वीडियो एआई यू बनाईचियो है। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू आज जयपुर माए प्रदेश स्तर री प्राकृतिक खेती कार्यशाला और मल्लखंब प्रदर्शन राखीचियो। इन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानों कीड़ा मारण री रासायनिक दवाइयां कम काम लेवन और प्राकृतिक खेती करन बाबत कहो। श्री बागड़े किसानों रसायन काम लिया बगैर अनाज उपजार जनता ने बीमारियां बचावन माए मदद करन री अरज कीनी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो का किसान पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग सरीका प्राकृतिक खेती रा तरीकाओं इंसान और मिट्टी दोनों री सेहत रो ध्यान रखे है। मुख्यमंत्री कहो कि मौजूदा दौर माए रासायनिक खाद मोटी तादाद माए काम लेवणु मिट्टी रो स्वास्थ्य खराब भी है।
2: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें मिट्टी डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे। नीम की पेड़ छाट करके उस पर डाल देते थे, 4 दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
0: श्री शर्मा कहो कि किसानों री बरकत सारू राज्य सरकार पानी और बिजली री उपलब्धता तय करण री विगतवार योजना बनाई है। ई मौके गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत कहो कि रासायनिक खेती रा कारण खेता माए मिट्टी माए ऑर्गेनिक कार्बन घणो कम रेक्यो है। बूंदी जिला री केशव राय पाटन, तालेड़ा और हिंडोली पंचायत समितियां रा कामकाज माए लापरवाही रा आरोप माए बीडीओ और 11 ग्राम विकास अधिकारियां ने मुअत्तल कर दिया गया है। आ ग्राम विकास अधिकारियां रे खिलाफ 16 CCA रातेत विभागीय कार्रवाई शुरू करन राहु कमी दिया चिया है। प्रदेश माए आज शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किया। 15 जुलाई तक चलन वाला आ शिविरां रे जरिए लोगां ने न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो आसानी दियो जा रियो है और न्यारा न्यारा महकमाओं जुड़िया काम मौके ही निपटाया जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए शहरी सेवा शिविर री

0: बात किन्नी। ए मौके वे लोगाओं शिविर माए मुहैया कराया जा रहा सुविधा ने जानकारी लेनी और जमीरा पट्टा दीना। मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू 21 जून ने ओजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा माए अब विद्यार्थियों ने 15 मिनट बत्ता मिलेला। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA रे मुजब अब 195 मिनट री आ परीक्षा दोपहर पाछे 2 बजाऊं सिंजा 5:15 बजे तक ली जावेला। दूजीगानी कोटा विश्वविद्यालय रे ओरू राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 सी ई साल 6 सितंबर न ली जावेला। ई सारू 14 जून नु 15 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकाउ अर्जी दी जा सकेला। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर BP सारस्वत बतायो के ई दफा आ परीक्षा राजस्थानी सिंधी पंजाबी फारसी और उर्दू समेत 35 विषया माए ली जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सड़का माथा हिफाजत न जनता रो आंदोलन बनावन सारू सगलाओ जिम्मेदारी सागर काम करन बाबत कहो है। वे आज जयपुर माए स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल री मीटिंग माए बोल रहा है। उप मुख्यमंत्री सड़का माथा हिफाजत रा जतन असरदार तरीकाओ करण सड़क हादसा री जद माए आवन वाला ने तुरंत मदद और बेहतर इलाज मुहैया करावन राय हुक्म दीना। वे सड़क सुरक्षा मित्रा ने प्रोत्साहन राशि सागर जरूरी साजो सामान देवन बाबती कहो। डॉक्टर बैरवा जनता सारू आसान और आरामदायक सफर तय करण सारू बसा री फिटनेस जांच करावन और बस चलावन वाला रा स्वास्थ्य री जांच करावन माथे जोर दीनो। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले नौजवानों नशो नी करण बाबत कहो है। वे आज जयपुर माए नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन माए बोल रहा है। अठावले नौजवानों वारी ताकत देश बनावन माए लगावन सारू कहो। केंद्रीय राज्य मंत्री कहो कि नशाओं समाज रा हर तबका ने नुकसान पे है। वे सगड़ा लोगों ने आरे सारे रा नशो करण वाला ने नशो छोड़वा सारू प्रेरित करण बाबत कहो। मंत्री जाति रा आधार उन जनगणना ने देश सारू चोखी बताई।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। अब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन ये जानकारी मिली। दूसरा हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है भी जानकारी मिली और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का SC ST को OBC को फायदा मिला है और उनको किनके पास खेती है किनके पास बिजनेस है ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: श्री अठावले कहो कि नशा मुक्ति केंद्र खोलन वाला ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय री ओर माली मदद दी जावेला। वह एक गैर सरकारी संस्थान का नीव राखी जिया नागरिक और दिव्यांग जन सम्मान समारोह माई शिरकत कीनी। ई मौके वह कहो कि मंत्रालय दिव्यांग जन ने जरूरी साजो सामान मुहैया करावनो तय कीनो है। आज बाल श्रम निषेध दिवस मनाई चियो। ई मौके करौली माए बैक टू स्कूल अभियान शुरू करी चियो। इन तेत 12 जुलाई ताई सामुदायिक जागरूकता जुड़िया कार्यक्रम रख्या जावेला। इस आगे स्कूल छोड़ चुके बच्चा ने ओजो भनाई लिखाई जोड़वा और बालपना माए ब्याह न रोकण माथे जोर दियो चियो। जिला रा 30 गांवां रा सर्वे माए करीब 650 टाबरियां रे स्कूल छोड़वा और 600 टाबरियां रो बालपना माए ब्याह वेवन रे शंका रे छापड़ी। पाली जिला रा सुमेरपुर माए एक बच्ची ने मजूरी आजाद कराई ची। अरब मौसम राज्य रा उगनी हल्का माए लारला 24 घंटा माए बादलां री गाज और बीजलियां री चमक सागे जोरदार बायरो बाजो और बिरखा फी। श्री गंगानगर माए आज ओला पड़िया। दूजी कानी आतूनी हल्का माए कठे कठे लू बाजी और रात री बगती तेज गर्मी रही। प्रदेश माए घनखर ठोड़ा पारो 40-43 डिग्री सेल्सियस पीछे दर्ज करियो चाचियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि बीकानेर भरतपुर जोधपुर अजमेर और जयपुर संभाग माए 16 जून ताई कठे कठे बादलों री गाज सागर तेज बारिश रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है, इसके असर

0: अमेरिका ने जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन अब तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में एक दर्जन तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान कुछ स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में दिनभर की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
1: एशियाई खेलों में सोना रो तमगो जीतने वाला दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा देवलोक फेंकिया है। 49 साल रा राणा भारत रा निशानेबाजन है। पिस्तौल चलावन रे सिखावन देवन माइला क्योड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता निशानेबाज जसपाल राणा रा देवलोक फेवन पर गहरो शोक जतायो है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा ने चैंपियन एथलीट बताता था कहो कि हमारा योगदान ने हमेशा याद रखियो जावेला। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल में महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला रखी जी। राज्य सरकार सड़कां माथे हिफाजत ने जन आंदोलन बनावन सारू भेली जिम्मेदारी सागे काम करने की अपील की। प्रदेश का उगनी हलका माए गरज चमक सागे बरसात, आतुनी हलका माए लू रो कोप। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: यह रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM FM 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: राम जी को सुनाना सकलो बने विशु भाई रहर
1: मनु भैरा घना घना राम राम। जो है विशु भाई के देखो क्या पर है, देख रहा हूँ कि गर्मी का मौसम है और ये गर्मी तो जेठ से महीने में खूब सारी गर्मी पड़ रही है और जो है टेम्परेचर भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये साथ साथ आप तो आप ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अपन ये साथ साथ अपरा जो पशु है किसान भाई, अपरा जो पशु पाले पशुपालन जो करें वो ना भी पशु और विशेष रूप से ये मौसम में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मौसम में पशु बीमार होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वास्तव में देख तो की है कि आप जो रख रखाव वाली जो जगह है वो जो है सुरक्षित जगह में से रखे, बाड़ो बना के रखे और हवादार रखे, तो और जो पानी भी जो पावे वो जो पानी भी जो जगह है थाले उन्हें भी जो बराबर समय में साफ सुथरा रखे और हो सके तो ना ताजो पानी पाने की कोशिश करे, रोज भी स्वस्थ पानी पावे। और ये साथ साथ आपको देखा है कि आप राजस्थान में वहाँ जो विशेष रूप से जैसलमेर में एक नस्ल की गाय गाय है जो थारपर का गाय है, एक ये जो है ये मौसम में झट झलन रही व्यवस्था रखे, मतलब वो रखे कि भाई ये गर्मी के मौसम में भी जो है दूध देने की क्षमता भी कम को नहीं रहे और गर्मी भी इसमें भी लड़न की क्षमता रहे। तो थारपर का एक उत्कृष्ट और दोहरे उद्देश्य वाली स्वदेशी वापर जो मवेशी नस्ल है जो राजस्थान रहा रेगिस्तान रहा विशेष रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जावे, यह सफ़ेद सोने का नाम से भी प्रसिद्ध है और गाय रेगिस्तान की चरम जलवायु के प्रति अत्यधिक सहनशील हुई और ईर में न्यूनतम चारे की आवश्यकता हुई और यह पौष्टिक दूध भी अपना प्रदान करे। ये जो शारीरिक लक्षण यह है कि यह मध्यम आकार हुए, चौड़ो माथो हुए, सीधी पीठ हुए और मुख्य रूप से देखा तो सफ़ेद और हल्के भूरे रंग शरीर होया करे, पहले और आगे और पीछे रहे इसे अक्सर जो है गहरा और भूरे रंग रहा हुए। जैसलमेर क्षेत्र जो भीषण गर्मी तेज धूप और शिविर पानी की स्थिति न भी जो आसानी से सहन कर सके। दूध उत्पादन में देखा तो औसतन प्रतिदिन 10 से 15 लीटर दूध जो है प्रभावशाली उत्पादन हुए और जबकि कुछ अधिक दूध देने वाली गाय और हमारे प्रतिदिन 20 लीटर से भी अधिक दूध उत्पादन है करे। तो इस प्रकार से जो है यह जो थारपकर गाय है यहाँ ये एरिया वास्ते या पर राजस्थान में जैसलमेर वास्ते विशेष रूप से प्रभावशाली गाय है और आगे भी बड़े बात कर सो, लेकिन पहले सुनिए बढ़िया है लोकगीत।

तो उन्होंने बहुत बढ़िया लोकगीत सुनियो। और मैं आज बात कर जी कि आज जो है 12 जून है, और हर साल 12 जून में जो है बाल श्रम विरुद्ध विश्व दिवस जो है 12 जून में मनाया जाए। ये दिवस का मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम के खिलाफ जो है वैश्विक जागरूकता फैलाना और बच्चों में जो है शिक्षा सुरक्षा और एक गरिमापूर्ण बचपन को अधिकार दिलाना। दुनिया भर में लाखों बच्चों आज भी गरीबी और सामाजिक असमानता के कारण कारखानों में दुकानों और खेतों में काम करना मजबूर है। और यह दिवस अपनों जो कोई गंभीर समस्या के खिलाफ एकजुट होना और बाल श्रम पूरी तरह समाप्त करने के लिए भी प्रेरित करें। ये महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है 2002 में की गई थी, जब इसमें हर साल ये दिन सरकारी और गैर सरकारी स्तर में विभिन्न कार्यक्रमों रैली और संगोष्ठियों के माध्यम से समाज में जागरूक किया जाए। बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई रे में आप अपन सबों ने एक जागरूक होकर के नागरिक के रूप में आप योगदान देना है। और यदि आप बाल कल्याण के लिए काम करना और संगठन और समर्थन करो तो यह अपने वास्ते बहुत ही अधिक बढ़िया बात है। तो आप आगे भी बड़ा बात कर सो, परेशन जो बढ़िया है लोग भी।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत कार्यक्रम। यह रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

पड़ा कागला जद तुम्हारा पिव जी घर आवे, जद तुम्हारा पिव जी घर आवे।

रे घूंघरा। अगला में थारे बांधू रे घूंघरा, गले में हार पहराऊं तागा, जैसे मारा पिवजी घर आवे रे।

जन्म जन्म जन्म जन्म गुण गाऊं कागा जत मारा पिब जी घर आवे रे आवे जत मारा पिब जी घर आवे उड़ी उड़ रे मारा काला एक अगला जत मारा जग मारा।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं RD बर्मन के संगीत से सजा फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार शानू ने।

कुछ है सब इश्क है यारा, हुस्न का मजहब इश्क है यारा, रब क्या है रब इश्क है यारा, दिल का मतलब इश्क है यारा।

दोस्तों, गीत संगीत के इस सिलसिले को अभी यहीं समाप्त करते हैं। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार है मेहंदी हसन।

人之心性，लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए पहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

0: ஆசிரியர் கழகத்தில் சேராது சார்.
1: குச்சித்தோ குச்சித்தோ.

दो शेर नए हैं, अहमद फराज साहब के नहीं है, लेकिन रदीफ और काफिया एक ही है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अहमद फराज साहब ने पहले गजल लिखी है या उन शायर ने पहले गजल कही है, तो उनके शेर हैं।

के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोह

कि मुहब्बत का छुपाना है मुहब्बत, माना कि मुहब्बत का

जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं

से जैसे तुम्हें आते हो नहाने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं

जैसे जैसे जैसे तुम आते हैं, जैसे कैसे जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे तुम्हें आते हैं न आने।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद 9 बजे न्यूज एट नाइट, जिसे हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री

0: वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हो।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ अकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का

0: काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समय पर तरीके से भी पूरा करने का काम करूंगे। देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डब्ल्यू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी है, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सहर मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारत के समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है।

0: Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क़यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया।
2: यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

मिली थी तुमसे सब पनहारियां, दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। सबसे पहले सुनते हैं सीमा मिश्रा को।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। आज की कलाकार थी शोभा हर्ष। हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर से। आइए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

दिल जवां और दोस्त हसीन, चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां

0: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं, ये तस्वीर किसकी है?
0: एक लड़की जिसे मैं कई बार सपनों में देख चुका हूँ और इतनी बार देख चुका हूँ कि उसका चेहरा मेरी आंखों में समा गया। बहुत लड़कियां मिली, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली।
1: क्या मैं देख सकती हूँ?
0: एक शर्त।
1: वो क्या?
0: भगवान से प्रार्थना करना कि वो मुझे मिल जाए।

सिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल

0: हाय कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है।
1: ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शराब।

झुलाएं, लहरें झूला झुलाएं।

की रेखा हो, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा।

जानते हैं वो जानते हैं तुम्हारी बातें, तुम कह लो शर्म इसको।

0: दीवाना तुम।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में दिल्ली के अंदर से प्रसारित होंगे।
2: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी के इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने के प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय जूलियट आरकेल। Prime Minister